जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय छड़ाया एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्लोक महला पहला।

गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग मच प्याले।

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संग

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जा

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया ऊडे ऊडा वैसै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल।

सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्या वह सब त्या वह तुद जी।

तब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै कर।

तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

संस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायु, देव दैत जच्छन उपजायु, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंदज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं भूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उवार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छाह छव सक।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रा, तुम माधु पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समगिरी तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते हो सो आगे आका,

सत्संग जी, बोलो जी। वाहे गुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाचे दर्शन प्रथम भगवती से बरकह गुरु नानक लई त्याय हरे अंकित गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावैता है सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब साई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ दर दत्ते अंतर के खलते से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन सकिया देख चलाई देव वाहे देख निड़ की तरह ना प्यार सत्यार नहीं कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ही सीध दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लगाइया चकड़ियां चढ़े आर नजर आए गया गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसे देखे संसाए तिना नहीं कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा गुरुद्वारे दत्ते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चेत आवर का सदका सर्व सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब दरचर्या देख देख की फतेह ब्रज की पहल पंथ की जीत श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे चुग जगाटान धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा शाही दतार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरु धाम जी ने तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की रात सेवा संभालता था अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु तन तन गुरु दतार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे तराने रास ये गरीब नवाज जी आपके चरण कामों दरदास दतारे आपने बख्श की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखन साहब संपूर्ण पढ़ दता ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधदार रह रहा सत पाठ की कृपा करो मुइयां भुलां चुकां दी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सतखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारियां संगतां दे हिरदे निशानी की बात करो जी अगो तो शोधे पितर बाणी तारी मन बुद्धि बख्शिश करो कि मैं आज इस खुशी में आप दिन बख्शियां दातों में पितर कड़ाप सारी जगह त्याग कर हाथ दता आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सत्संग की रचना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखां कलेशां रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गिरिवाज कृपा करो दतार आप दिन बख्शियां दातों के नगर झुट सवार प्रबंध करनी गिरिवाज जी हो अमृत वेद लैके दर्द आई है साफ संगतान ने आज दर्द प्रवान करो कड़ियां लिखे लाओ संगतान का दर्द तिरपुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु की बनवाज बच्ची सारिका सरोया के जन्मदिन की खुशी परिवार वालों $100 आपके चरणा पेटा की दर प्रवान करो उस घर के बच्ची गुरु बनवाज दतार जी हो सारिका सरोया तंदुरुस्ती बख्शो बच्ची लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्म देश को दिया गया कर बख्शी कर दता बच्ची ने गुरसिखी दाज बख्शिश करके उची विद्या दाज बख्शो सारे प्रकार की तंत्रता की सौखियां चढ़ निकला करो कमाइया सबर करो दात्या आप रात परखो जी गुरु गरीब नवाज खालसा पंथ सिख कौम एकता सुभाग प्याज बख्शी करके सतन दाज बख्शो चैनल जोड़ ग्रमण का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह सुभालता करो जी गरीब नवाज दूर दराज कर बैठी लाइव करता की सरण कर रही हैं सारी संध्या घड़ियां लेके लाओ सारा अपनी कृपा की संगत बख्शे ने संगत आप चरण धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया आलाइन गुरु घर सेवा सिंह अनुसार संगत माया पेट के चरण प्रवान करो बख्शा कमाइया सब करो घर वादे बने सार संगत शुभकामना सर्वे पूरी करो जी तार बख्शी करो मेहर करो सेवा प्रवान करो पुनः चुका वाही बख्शो पवित्र बख्श परंत अज के शाम कथा की दुआ हमता वास आगे बख्शो रहते का सुहा की चरण समाज बनाओ शुद्ध से पित्र सेवा सही प्यारे मेरे दिन अपना नाम जता हुआ नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्य गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु

साहिब जियो। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावणे, कारज आए रास। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सत गुर प्रसाद।

जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरा हियरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा रहाओ।

तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन जन सब सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साज पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। मोको की जय दास दास दासन को, हर जया चार जगन्नाथा।

0: जन नानक चलहे मिलन था। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुरे अंतर दीजे जन नानक चले मिलन था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सुहला सुहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सत गुर प्रसाद जयकर कीरत आखिए करते का होए विचारो। तित कर गावो सुहेला सिवरो सजन हारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सुहेला हो वारी जित सुहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालयन देखेगा देवन हार। तेरे दान है कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजन असी सुनिया जो हो वैसा है सो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हार असमरिये नानक से दे अवन राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राग वडाई तोय रहाओ। विश्वे चसिया कणिया पैरा तिथि वारी माहो होवा सूरज एको रुतनेक। नानक करते के केते वे सराग तनासरी महला पहला। गगन मैथाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मने आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय को। सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन। सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत इस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंत लोभित मनो अंजनो मोहे आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा। काम क्रोध नगर भोबरिया मेरे साधु खंडल खंडा हे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर रसा ना जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पौ खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम अदा टेके हर नामे सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा आ गए बसन सुहेला। औद गटै दिन सरै नारे मन गुर मेरे का सवारे। रहाओ यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पिया वै एहु रस अखत कथा तिन जानी। जा को आए सोए विहा जो गुरते मने बसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे बौर न होए गुफेरा। अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की पूरे।
1: अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे।
0: नानक दास यह सुख मांगे
1: मुख कर संतन की पूरे। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। तुदा गए अरदास हमारी जियो पिंड। कहो नानक सब कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी साहेब वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याये जे डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करना उनी दावे ताए। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖਮਈ ਸ਼ਾਂਤ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਲੰਗ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

हर को नाम किन माय उदारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जप तो हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनकर माया रंग तिक न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जी मार गयो जात अकेला, तै हर नाम संगोत सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूट तो नहीं कूट लखबाई, नाम जपत है पार पराई, अनक बिगन जय आय सिंगार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनिक जो जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पाप को वै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जी मार के गन जाहे न कुसा, हर का नाम हुआ संग तोसा, जी पैडे मंद गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहा पंथ तेरा को न सुजानू, हर का नाम तै नाल पुछानू, जय महाप्यान तप्त भो काम, तै हर के नाम की तू पर छाम, जात्रिका मन तुझ आकर कै, तै नानक हर हर अमृत भर कै, भक्त जना की वर्त नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ऊट, हर कै नाम उदरे जन कूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मंत्र रंग रते रंगे कह, नानक जन कह बिरत विवेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कह नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कह नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप्रव दीना, हर हर जन कै उठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, उत्पोजन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तीन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेके सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग मन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिय एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माँ उदास भी सर थीवै, अगन माहि होमत प्राण, कनिक सुभ है वर भूम दान, नवली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, ताव भी होमै मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिकिया टरे, जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथत बहु मूच, बहुत स्यान जम का पव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै, एक अनेक अग्नि बुझै, कूट पव दरगनि सिजै, छूट सुनायु पयाल, मुह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहि मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै, सा संगे हो मैं छूरै, जे को जन मरण ते डरै, सा जना की सरणी परै,
जिस जन को प्रभु दर्श पिया सा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संजा का मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल सिर साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप नहीं लिपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान कर्म कराव नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत मित जान हूँ आपे अपन संगा प्रवराते तुमरे उस्त तुम ते हुए नानक अवर न जानस कोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार याने आंसु प्रभु सदा संभाल जिनकी या तिस्थित रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दस्तानी जिन तू सा स्वार सी गारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन हे ओ निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सी जय जे प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नान काड लिहु प्रव्यापे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार चाकी सेवा नव नित पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मानु तिसे बिसारे मुग्ध जान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संगरचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लीप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग हुए अंधकू मैं पतद विकराल नान काड लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक बचारा करे दिन रात बाहर पेकंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोभ सुहा अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समाप्त सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले होड़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कही है तू समझै पूरा कहाँ विष्णु पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ करमाने मने प्रतीत काल नया वै मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू युक्त बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गातमित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागै अनुसवाए नानक कहु न सी जई बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखूट गवावै एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहो कहा करे जिष्ठा कुर्सियो नाही चारा ताको की जय साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोग नानक तिन पाया
अगंत सब अपनी दे रास खात पीत वर तैन दुलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी परती ताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ती से आज्ञा रथ है प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावे उबिन सह मन पछतावे जो दिसै सो चल नहार लपट रहो थे अंध अंधार बटाओ स्यो जो लावे नेहि ताको हाथ न आवे केहि मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान काप ले लाई मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या ओ मैं ममता माया मिथ्या राजो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्वस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुमु अभिमान मिथ्या पशु पर कर तुगमान स्त्र पग साज की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ सुलोभावे मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाई मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन बार भेख न काहू पीन और उपदेशय आप न कर आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया या पह मान या पह आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से आनुप सगल ते रहत सब का जान आत्म की रहत जिस पावे तिसलय लड़ लाए थान थनंतर रहा समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना ठपैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्या कतवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैरता का जस गावे जय जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गह मान पावे नानक पद छेती घर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वस्थ सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मुलक धना राख पुरोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत्य सह त्याई तिसे त्याई जो एक अलग कै आऊहा नानक तेरी रख जे प्रसाद करे पुन बहदान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने कर्ण नाद जे प्रसाद पिखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਵਤਿਆ ਗੁਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਤੂ ਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾਥ ਸਲੋਕ ਹਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੇ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਖਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਕਤ ਹੁੰਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤੁਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬ ਹੁੰਤਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान छौ वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होइ सा सुन पावै जन हुई कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रोग का उखत नाम कल्याण रू मंगल गुण गा मुकाहु जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसका नाम पार ब्रह्म का निवास जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास हो आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची पर सगुण संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरक तैसा उसोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिकाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक गुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगल ठाऊ जित जित घर राखै तैसा तिन नाव वापे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग फसर आपंत रंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परदास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल लोक पुस्तत करै अनेक जानंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विदनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोटा तुम ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवत नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश पर माहे जि जित लाहु तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिख निप जाए कई कोट पवन पानी वह संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपना सूतार है नानक जिच भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थशास्त्र कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जह कि नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगा सब ते निर सब उते दूर नानक अपलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर कई कोट भोजन नी फिर है कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तह तै राखे नानक सब किच प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होय अपसु प्रसन्न नानक तीजन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुग किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदै के कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते होय ब्रह्मा समाता कांत न जाने कोई अपे अप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्मरा सुख सह समावै अपने जन को सास सास संभारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण है जल थल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई हो किन में ताप तापन हारा अंतने किच पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुगत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै
प्रभाव है बिन सास राख्या प्रभाव है ता हर गुण भाख है प्रभाव है ता पथ दुधार है आप करे अपन विचार है दुआ सिरिया का स्वामी खेल बिकसे अंतर जामी जो भाव है सुकार करावे नानक दृष्टि अवरनायावे कौ मानुख ते क्या हुए आवे जुत छिपावे सोई करावे इसके हाथ हुई तो सब किच ले जुत छिपावे सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जान तापना बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमख माय चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट को खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जाकू अपनी करे बख्शीश ताका लेखा न गणै जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करण करावन सर्व कुनाथ आज्ञाकारी बपुरा जीव जो छिपावे सुई फुंथियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्यार कबू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कबू नृत्य करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेघारी नीच का साचा कबू अपकीरत महयावै कबू भला भला कहावै जो प्रभरा कहते भी रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मून धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन परम है परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै निचावै जो छिपावै सोई हुए नानक दूजा अवर न कोय कबू सा संगत पावै उस स्थान ते पौर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कर सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आए आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का चंत आपस को करवंत कहा वह जन्म मरै बोजुन परमा वह धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता गह सुख पावै धनवंता वे कर गरबावै तिन समान कर संग न जावै बहु लश्कर मान कूपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राज करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नव सुर फिर अवतार अनेक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर धर गय को कैसे गवै आप उसको जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोहे जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोई जब ही जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता जब तार है कुबैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सुजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लख उठतावै तृप्त नयावै माया पाछै पावै अनिक भोग बिकिया के करे न तृप्तावै कब कमरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार उसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किचकिनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखे करे विवेक अपहे कपे अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनो अपन विस्तार सब कछु उसका करने हार उसते भिन्न कहो किछु होए थान तनंतरी कै सोए अपने चलताव करने हार
कौतक करे रंग आपार मन मैं मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मते किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सोजन उतरन हार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन हार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था उपो नाही नान संत पावे तो भीगत पाही संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक किन टिक न पाई संत का निंदक महत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे तो उसका पी हुए मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी कौ डान लाग गए संत के दुखी कौ सब त्याग गए संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज न पहुँचे संत का दुखी संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते तोता यो सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किछ नाही अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी कवर न रखन हार नानक संत पावे तन ले उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला ज्यों वाड़ तिलकी तुमाही दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत किरत निंदका तुर ही पया नानक जो तिस भावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजा नयासा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोए जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया किरत न मिटै कोए नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिस क्यों कर नैहार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसह त्याहु सास गिरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोठिया अपना किला पर नैहार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो सियान पुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जानो देवन को एक है भगवान जिसका दिया रह अगाए बहुत न तृष्णा लग गया मारे रखे को आप मानुक है किछ नाही हाथ
ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਾ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ, ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਭਾਵ ਜਪੀਐ ਅਰਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਚਲ ਮੱਥਾ, ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਹੁਤੇ ਸੁਖੀ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਤੁਤ ਕੀ ਸੁਜੀ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਜੈ, ਤਿਸਕੀ ਜਾਨੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ, ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ, ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੂਖ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਬੂਜਿਆ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲਤਾ ਭੀ ਕਰੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਿਸ਼ਟਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਅਨਿਕ ਜੁਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਥਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਕ ਅਪੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਛਪਾਏ ਥਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਏ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾ ਦੇਖੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਇਆ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਾਹੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੂ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੁ ਗਰਬੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਦਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੂਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਭ ਚੜ੍ਹਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ

तिसै चितारो, जो कछ करै सोई सुखमानो, भूला काहे फिरै जानो, कौन बरसताई तेरै संग, लपटरियो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पद छेती घर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तजब मान लेहु मन मूल, राम नाम हृदय महतूल, लाद के संतै संचाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कै सब कुए, मुख उजल हर दर गै सोए, इहो वापार बिरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तुए तुए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध उपर जाइए कुर्बान, सा सेवा वडभागी पाइए, सा संग हर कीर्तन गाइए, अनिक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, उठ गई संतै दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिस्काउ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिया त्यो लोए, चा कै हृदय को होए, सच करनी सच का की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक रूप नरेक नरंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन महराख, मानुके तू प्रीत त्याग, तिस्ते परै नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोय, आपे भीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा

ताप में तपीशर दृष्ट में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाही पिता के जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सुमा

जन्म मरै फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै एक रंग, नाना बिदकिनो विस्तार, प्रभ बनासी कंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपने कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संगुदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बानी, सत पुरख सब माहे समानी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै वचन पदार्थ लहे, कोई दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भाग।

चरण सत सत पर सुनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रसोए, सत स्वरूप रितै जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा करदै विश्वास प्रव्याया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरभउ होए पसाना, इसते उपजिया तिस माहि समाना, बस्त माहि ले बस्त गडाई, ताको भिन्ना कह ना जाई, बूझै बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानके, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक

अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मित कोई न लखे, प्रभु के सेवकाओ को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लाखे, जिसका शासन काढ ताप, ताको राखत देख कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरते जात, मारण रखे अवर न कोई, सर्व जिया का रखा सोए, काही सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत मंथन तृपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंथन नाम नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जिन कै सदकाम, बोलो जा जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगता तुम कह चाई, प्रभ अपने सो रहे समाये, जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, जिसकी महिमा कौन बकानू, जिसका गुण कह कना जानू, आठ पैर प्रभ से हजूरे का

0: सो जन सर्व दुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवश्य अनुप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद
1: सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग से गुजरे, नानक हर गुण गावत परी। सतगुर से की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, से की गुर दुर्मत मिले, गुर बचनी हर नाम चरे। सतगुर से के बंधन काटे, गुर का सिख बकार से हटे। सतगुर से को नाम तन दे, गुर का सिख उठ पागी है। सतगुर से का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर से को जी नाल समारे। गुर के ग्रह से जुरे, गुरु की आज्ञा मन में से, आप को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस के कार्ज रास, सेवा कर तो है नेकामी, तिसको होत प्राप स्वामी, अपनी कृपा जी साफ करे। नान सो सेव गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु किसी दे अन्ना हो, अनक बार गुर को बजाओ। सर्वदान जी का दाता, आठ पैर पार उठाता, ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कई परम, सह सियाण लैण जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सबल दर्शन पेख पनीत, परस चरण का निर्मरीत, पेट संग राम गुरवे, पारम की दर्गी गवे। सुनकर बचन कर गाने, मन सुन तो खात पत्याने, पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, और दृष्ट पेख्यो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नान जिस पावे ते लै मिलाए, जे बाएक उस्तर नेक, सात पुरख पूर्ण विवेक, पौष प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्भानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अन भगत बंधन हित करे, चरण कमल हृदय सुरे, सद बलिहारी सतगुर अपने, नान जी प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। ਇਹ ਅਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਵੇ ਕੋਲੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁਖ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤੌਤ ਮੈਂ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅੰਧ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੁਕਾ ਨਰ ਪੋਹ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਲ ਮਨ ਤੇ ਖੈਸੈ, ਸਗਲ ਬਿਆਲ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮਰਾਰੀ, ਤੇ ਤਪਾਈ ਚੁਕੇ ਪਰਮ ਗਉਣ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਰਾਹ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ, ਅਣਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥਨ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਹਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਨਕਿਓ ਤਨਸਾਰ ਵਟਪਦੇ ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮਦਾਰ ਔਰ ਪਾਪ ਸਾਮੀਤ ਵਸਾਰੋ ਕਰਨ ਕਰਨ ਰਿਧਮਿਰ ਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਸੁਰਥ ਦੇੜ ਕਰ ਗਹੁ ਨਾਮ ਅਰਹਤ ਏ ਤਨ ਸੰਚੋ ਓ ਭਗਵੰਤ ਸੰਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਵੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁਰਤਾਵੇ ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜੇ ਸੋ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੇ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਣਕ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਹੇ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਵਖਤ ਲਾਏ ਸਰਵ ਨਾਣ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਹੀ ਰਹਿ ਜਿਸ ਥਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਹਸੋਏ ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਪੋ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਵਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਿਨ ਸਾਚਾ ਜਨ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਉਣ ਮਿਠੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਅਣਖ ਪਾਵ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਖਤ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਪੰਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਪਾਏ ਸਾਂਗ ਨ ਚਾਲ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆਲ ਬਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਖਟਾਮਰ ਬਣਤਾ ਏਤੇ ਕਹੋ ਤਮਰ ਕਮਲ ਸੰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਏਤੇ ਕਹੋ ਕਮਲ ਛਟਕਾਰ ਆਸਕਤੀ ਰਤ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਟੰਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ ਜਿੰਦੀਏ ਤਿਸੇ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾਮ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਣਾਵੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਸੰਭਾਰੋ ਜੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨਵਾਏ ਜਨ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪੋ ਆਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੁਰਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਿਰ ਪਾਓ ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਾਤਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸਫਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਣਸ ਜਾਏ ਹਾਮੇ ਬਿਖ ਪੈਲ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਧ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਸ ਪਾਵੇ ਸਚਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਚ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੇ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕੋ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨਾਏ ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭਿਆਪ ਅਣਕ ਵਿਸਤਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਏ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਵਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभेनती अपनी भगती लाए अटबले जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवर नाम साजना की मांगो तुर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ साल सास प्रभु तुम्हें त्याओ चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नतनीत एक ओर एक आधार नानक मांगे ना प्रसार प्रभु की दृष्ट महास कोई विवरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नए डुलाने सो पर परे प्रेम के रंग सो पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरण अण सब त्याग अंतर प्रकाश अंध लाग बड़ पाकी जपया प्रसोए नानक नाम रते सुखोए सेव की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्बल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव किनो सदा निहाल बंधन काट मुगजन पया जन मरण दो परम गया एच पुन्नी सरदा सा पूरी राव रिया सत्संग जूरी जिसका साथ लिया मिलाई नानक भगती नाम समाये सो क्यों बिसरे ये काल न पाने सो क्यों बिसरे ये किया जाने सो क्यों बिसरे तिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे ये जीवन जिया सो क्यों बिसरे जगण में रखे गुर प्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे ये बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गाड़े गुर पूरे तत ए बजाया प्रभु अपना नाड़ जन त्याया साजन संत करो ए काम आप त्याग जपुर नाम सिमर सिमर सिर सब पाओ आप जपो अवरा नाम पाओ भगत पाए तरिए संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सूर्य नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मंत्र यंत्र यही सौ नेत्र पेख दर्शक हुए मन विकसे साचर तो है पग जना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजिए करमया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रिहा सरसवाए प्रभु क्षण दीन दयाल भक्त वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रपाल आल पुरख कारण करतार भगत ना के प्राण दार जो जो जपे सोए प्रीत भगत पाए लाए मनहीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी सरन पुरख पान सर्व मुक्त मो पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए बो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पड़ी सुकर्मी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सास प्रभु दियो नवास सर्व सो नुक पर गासो सार गुण धर्म गुण अहंकार सुन समाधि आप
0: आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार कछ न दृष्टि ताप आप तब कहते होता जब तारी अपन सुन संवाद तब वैर विरो के संकमात जब इसका वर्ण चिन्हना जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का किस होवत परम आपन के लावर्ती जाना न करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक कह रगमा पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण ब्रह्म सह सुभाई तब शिव शक्त कहो हो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चल ताप कर निहार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन बकत तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप आपिय चर्जा नानक अपन रूप आपिय पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश जय छल छिद्र लगत को कीश जय जोश रूपी जो संग समावे तय किस कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुट भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय बेद कते कहा कुचीन जब अपने आप आपुर धार है तो सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊंचा अपन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जन वाप जय छल छेद पे सुमाया वहां किस व्याप्त माया गुआ पया देश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आप अप त्यारा तय कौन कतः कौन सुनने हारा बहु व्यंतूज ते ऊंचा नानक आप उसको आप पहुंचा जय पृथ्वी पर पंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार पाप उन ते पई कावत को नर को सुरु बंछावत हाल जाल माया जिंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान अपन के लाभ कर देखे खेल संकुचे तू अन नानक एक कह जय भग जय अभि भगत जय अभ्यगत भगत है आप जय अभिगत भगत है आप जय पिसरे पासार संत प्रताप दू पा काप्य धनी उनकी शोभा नू बनी आप कौत कर आनंद चो जा पै रस भोग निर्जोग जिस पावे तिस अपना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार था गंत तोले जो बिलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक के को पसरिया दूजा कह दृष्टा अष्टपदी जा आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार चात पावे था सृष्ट उपाय अपने पाने ले समाये तुम ते पे नहीं कि छोए अपन सू सब जगत पुरोई जा को प्रभु जी आप बजाय सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेथा नानक सब सृष्ट का जीता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को ना जिस राख है तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो पिसार तिस तबर कहा को जाए सब चरिख निरंजन राय जी की जुग जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो सात गुण निदान व्यंत पार नानक दास सुधा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाल जीवन बपा जो जो रुचियो सो तिस त्या जिस भावे सिले मिलाए भगत कर हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक जान्या जन लागा हर एक कहनाए जिसकी आस न मृति जाए सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जा के मन बसे निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंतिन पूजय गुर के पैरे लोक सुखे पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले सास मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देता करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तन कह स्वाट पै प्रपे को नेरा मिठे ज्ञान बिन सह अंधेरा सुरपति सिरदय साहु मन छे नानक फल पावो हल फल दो सुहा राम नमंत्रुर पूरे गुरु की पूरी दिखा जिस मन बसैति साच परिख्या मंथ नाम जिपोले बुलाये दुख दर मन ते पो जाय सच व्यापार करो व्यापारी ना दर गह बहके तुम्हारी काटे रखो मन माही नानक भवर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहा को जाय उबरे राख नहार त्याय निरपो जपै सगल भो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिसना ही दुख नाम जुगत मन हो व सुख चिंता जाय मिटै अहंकार दिस जन को कोई न पंच नहार सिर उपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताकि कार्य पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दूदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतरजामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक हर ध्याया सलूक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान धीर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नाओ निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हथे नाथ कह न जाई चज विस्माद तीन देखे साप दिखाए नान तीजन सो जी पाए सुअंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्या प्रया भगवंत धरन माहिया काश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माही चार कुंट दै दिसे समाही तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिय सूर नक्षत्र मैं एक पानी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला करके लखेल मोल न पाइया गुने मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार जो स्वामी ओत ओत गुरु प्रसाद भरम का नास नानक तिन में एहो विसास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख मान करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समूही आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनिकल अलकी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साप जनाए नान तिस जनया बुझाए सर भूता वरतारा सर्व नैना पे कनहारा सगल समग्री जाका तन आपन जसा पी सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सब कह मद अलिप्त हो रहे जो कुछ रहना सुहा पे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए स्थिर हुए सोना ही बुरा उरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत ने की आपे जाने अपने जी की आप साजधारी सब साज ओत पोत अपन संग्राजता की गतमित कही न जाए दूसर हुए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन कह है सुआओ जन कह संचित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोतरंग संत जना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साथ संगा गुण सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धारु उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाह जय सुन सुन अनद करे प्रभु गा जय

प्रकट सब लोई। सब ते उच पाए स्थानु बहुर न हो गया अवन जानु। हर तन घाट च लै जन सोई। नानक जिसे प्राप्त होए खेम कुशल सहजा। खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मत सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता। हे फल किस जन कै मुख भने। गुरु नानक नाम बचन मन सुने। इहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपरासा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रपाई सा सर नानक ते आई। जिस मन वसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत। जन मरणता का दुख निवार है दुर्लभ दे तत्काल उदार है। निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माही समानी। दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनि। सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनि। सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप ना हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मे बख्शीस इक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै मंगै देहे देहे दात करे दातार फेर के अकै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक।

ਨਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਅਪਹੰਗੋ ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਆਖੰਡ ਆਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਰਮ ਸਰਭਾ ਪ੍ਰਣਾਢੈ ਅੰਡੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਆਕਾਮੇ ਕੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਣੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨ ਸੱਤਰ ਹੈ ਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨ ਪਰਮੰ ਨ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਨ ਕਰਮੰ ਨ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਥੀ ਸੈ ਆਦਿ ਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ ਕੇ ਅਸ਼ਿਜ ਦਿਸੈ ਕੇ ਅਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕੇ ਅਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕੇ ਅਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕੇ ਅਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ ਕੇ ਅਵਧੂਤ ਵਰਨੈ ਕੇ ਬੇਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕੇ ਰਾਜਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕੇ ਆਸੂਕ ਵਰਨੈ ਕੇ ਸਰਬਾ ਅਪਹਰਨੈ ਕੇ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰ ਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ ਕੇ ਆਨ ਭਾਉ ਅਨੂਪੈ ਕੇ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰ ਬਹੀਨੇ ਕੇ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਕੈ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲ ਗੁਨਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਥਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦ੍ਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦ੍ਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਮੈਂ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀ ਮੈਂ ਕੇ ਆਕਲੋ ਅਲਾਮੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀ ਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕ ਉਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਂ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤਿਰਭਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤਿਰਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛੇਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿਨਰਗੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਵਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ
न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है। निरसाकं सरीक है अमित अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है करीमुल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल नेवाज है हरीफुल फिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमें सुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अधीश है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन अलजमा है अमीकुल ईमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांत तो अप्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनासु त्रित तरतुरासु अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अनठट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तो प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रैत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रिप्रतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपह अभय अभु अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे न नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोकर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं करीमुल रहीमे
चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नागे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवैख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबा सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवैख पवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट सनानक जातक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बेसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिये सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा को शीस नेवायो।

तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बेखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज कृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिव चलै जिना मार्ग पावहे कर किरपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारै सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिव चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया इक फिरै कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित

हर रंग, जपे हो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची।

कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पै रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द।

रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार ना जाने, ततै सार ना जाने गुरु बाजों, ततै सार ना जाने। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहाणी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रहन विहाणी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारियै, मनो क्यों विसारियै ए वडदाता, जे अगन मैं आहार पहुंचावै। ओसनो केहु पोहे न सकी, जिसनो अपनी लिव लावै, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालियै। कह नानक ए वडदाता, सो क्यों मनो विसारियै। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही, करतै खेल रचाया। जात इस भाणा ता जम्मिया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी कृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहा, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा।

अस मेरी मन हुआ वणजारा। हे रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए। होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए, हर रस पाए पलै पिए हर रस। बहुड़ न तृष्णा लागे आए, कहे नानक इहो हर रस करमी पाई है। सतगुरु मिले जिस आए, कहे नानक होर अन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आए।

कर्म कमाया तो दसरी राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक इहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ये नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरे हर निहालिया। इहो विस संसार तुम देख दे इहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए। श्रीर लाए सुनो सत बाणी जित सुने मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी साचो अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए।

नावनिद तिसदा अंत न जाही पाया, कहे नानक हर प्यार है, जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला सच कर गावो, गावो ता सोहेला कर सच जिथे सदा सच त्यावहे, सचो त्यावै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी। सुनते

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पत गवाई विनावे किस थाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: बेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सब पाए आस अंधे से तेने केवल हो मैं शब्द

0: कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोर करहे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहे भरपूर।
1: मत्थे टिका पेड़ धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना

सतनाम श्री वाहे गुरु जी, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी।

रहे कर तन तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी दाम मन वसावे नाम जिनकै मन वस्या वाजे शब्द खनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सान सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुरबान कीता गुरु विटो जेदियां ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द थरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अन सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल

सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरणों लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पावित सतगुर।

अमृत सारु सद ही भर पूरा रहाउ। चरण कमल रिद अंतर तारे, प्रगटी जोत मिल राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सहज सुपाय। आसा महला पंजवा, कर किरपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया, मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई, पाहे ना जालै जल नहीं डूबै। संग छोड़ कर कतहु ना जाई रहाउ। तोट ना आवै निकुट ना जाए, खाए खर्च मन रहा अघाए। सो सच साहु जिस घर हर धन संचाणा, इस धन ते सब जग वरसाणा। तिन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किरसान बोवै किरसानी, काची पाकी बाढ़ परानी। जो जन्मै सो जानू मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है थिया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात। माया मोह सोए रहे अभागे, गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई यह नीत, मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा, नौ नित तेरै सगल निदान, इच्छा पूर्क रखै निदान। तू मेरो प्यारू ता कैसी भूखा, तू

जात उदभावै ता हर गुण गाओ, तेरे घर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अलख अभेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप अर रंगा। करै न चुरै न मन रोवन हारा, अविनाशी अविगत अगोचर। सदा सलामत खसम हमारा, रहाओ तेरे दासरे को किसकी कारण। जिसकी मीरा रखे आन जो

रार करत झूठी लग गाथा रहाओ। वजो साहिब का सेव बिरानी, ऐसे गुनहा अच्छा द्यो प्राणी। तिस्यों लूक जो सद ही संगी, काम न आवै सो फिर मंगी। कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यों भावै त्यों कर प्रतपाला। आसा महला पंजवां।

ठाकुर की, भरपुर तार रही शोभा जाकी रहाओ। नाम निदान जाकी निर्मल सोए, आपे करता अवर न कोय। जी जंत सब ताके हाथ, रव रहे आ प्रभु।

गुर का दर्शन संचो हर धन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीतम मोहिला गैनाउ रहाउ तृप्त अगावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत दूराए अठसठ मज्जन।

आए, हर रस साधु हाट समाए, लाख करोरी मिले न केहे, जिसे प्राप्त तिस ही देहे, नानक चाख भए बिस्माद, नानक गुरते आया साध, ईत ऊत कत छोड़ न जाए, नानक गीधा हर रस माहि, आसा महला पंजवा।

साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा जप तप संयम धर्म न कमाया।

ताप मुआ बिख खाए रहाओ, पाला ताऊ कछु न ब्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी को चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाए, संत प्रसाद पर

पर धन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल से भी रिद अंतर गुर पूरे कै आधार गृह

आवै तत् शब्द न पछाने नांगा आया नांगू जासी ज्यों हस्ती खाक छाने संत सज्जन

सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गाव है, मसलत मता सियान पजन की, जो तू करहे कराव है रहाऊ अमृत।

तत् जोग न पछाने। उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किछ जाने, उसते कहा छुपाया, कूड़ कपट बंच निम्बुने।

सगल सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखे लाए सरदा ताका जन मरण दुख भागै ऐसी निरत नरक निवारै नानक गुरमुख जागै आसा महला पंजवां अदम

हर धन निर्मल गाठे, अंत काल प्रभ भये सहाई। इत उतराखन हारे प्राण मीत हीत धन मेरा, नानक सद बलिहारे। आसा महला पंजवा, जा तू साहिब ता पौ कहा, हौ तुद बिन किस सालाही। एक तू ता सब किच है, मैं तुद बिन दूजा नाही।

बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकूरते बाहा पकर गुर काट लिए, निर्भव पहे सगल भव मिटिया।

कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर सतवां महला पंजवां लाल चोलना तैतन सोहया सुरजन भानी ता मन मोहया कवन बनीरी तेरी लाली कवन रंग तू भई गुलाली रहा तुम ही सुंदर तुम है सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग

मेरी राव, निकट आन प्रसेज धरी, कान कडन ते छूट परी, मंदर मेरा शब्द उजारा, अनद विनोदी खसम हमारा, मस्तक भाग मैं फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया, आसा महला पंजवां, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल मह कौला रहा, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपने तरता, दीस आवत है बहुत।

रहाओ। तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया।

पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल न काई अमृत फल नाम जिन गुरु ते पाया नानक दास करी तिन माया।

पाई, सर्व सुखा बनी तिरे उल है, भ्रम के परदे सतगुर खोले रहाओ, हुक्म बूझ रंग रसमाणी, सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्वाण, जाको मिलियो नाम निदाना, भणत नानक ताका पूर खजाना, आसा महला पंजवां।

जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। गृहस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसियाया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाई है।

गुरु स्वारी गुरु रूप साध संगत वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई ये पवित्र पावन गुरु मंत्र गुरु नानक पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है। यह गुरु मंत्र है जिस दे जपन नाल जन्मा जन्मा दी पापा दी मैल इस मन दे उत्तों उतर जाती है, क्योंकि सतगुरु जी सानू दसदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला हुआ स्या हो, जिदा स्याई होंदी काली ना। सतगुरु जी कहिंदे ने मन इहो जिहा बनिया पिया है, इसे करके संसार दे विच इह विकार भोगदा है। विचार माड़े ने परत दर परत इस मन दे उपर पापां दी मैल चढ़दी रहिंदी है। वाहिगुरु दा सिमरन इस करके है, वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागावे, सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते है। आवाज देनी है, उठ उठ भाई जा।

हो साक्षात पर तुम्हें दिया हो एक हो टेको आधार नानक मंदे नाम प्रचार क्या क्या तेज तृप्ता ने पूर्ण तिलक नहीं डोलाने त्याग अंतर प्रसाद सेवक की मनता पूरी गई संगुर से निर्मल रख रही संसार का जल गया जन्म मरण धूप रंग गया काटी लिया मिला है नानक भक्ति नाम समाये शोक विद्रे जी सब पी दिया शोक विद्रे जय जीवन दिया विद्रे जय दीप के कार्य जनम जनम का टूटा कार्य करो एक नाम आनंद क्या जपो है नाम करिए संसार में भक्ति करो श्रीचारा हो नाथ नानक नाम जपो जितो पेट दर्द सुख होए मन विखे सात चरण धोए एक बार दीजे कर मैं